0: जाएंगे। ओम स्वस्ति अस्तु,
1: ओम स्वस्ति अस्तु। मैंने अब तक सरकार रोन को मुआ मकाय उलूंगा बड़े ने
0: तनुनिंग
1: कला रागा ने जा उलूंग आज रागा
0: इंगे सब सीखी aduh inggi durus-durus sementara selat segara wanang titi yang melihat satu menit dan ngeranjing niki gatur yang sementara ring darat niki ngeranjing inggi sana ring daratan dan jantos dumun aturan sementara selat segara ngeranjing inggi.